0: मध्यमरात्री दोलाहाई
1: liveFM.lk
2: वेहस निवन रिद्मय www.liveFM.lk